ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساس سجت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز यात्रुओं पार लगाऊंगा किते एक दिन मेरा गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह किते इस बेड़ी विच आ बैठे और उसनू पार लगाउण दी सेवा मैनू मिल जावे तां मेरे कितने को वड्डे भाग होणगे लगा रोज अरदासां करन इहदे बाकी दे साथी मलाह अपनियां अपनियां बेड़ियां लैके सेदे दे नाल एक दिन खड़ोते हुए ते सेदे ने आख्या मित्रो मेरा मन करता है कि एक बार मेरी बेड़ी विच मेरा गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह चरण पावे सारे ने मखौल की थी और सहदया अवल ता गुरु आउन नहीं लगा और जे गुरु इत्थे आ भी गया तो साडियां नवियां बेड़ियां छड़ के तेरी पुरानी बेड़ी विच बैठेगा भाई सहदे दे नैन कटोरे बार आए आख्या जे मेरा प्यार सच्चा होएगा तो मेरा गुरु मेरे को जरूर आएगा सत संगत बोलो श्री भाई सहदा उतों अपनी बेड़ी थोड़ी दूरी ते लै गया नदी दे विचकार खलार लई याद करदा धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ओ साहब जी कदों दर्शन दियोगे कदों इस निमाणी दे कोल आओगे और एक वरा कहोगे सहदिया मैनू अपनी बेड़ी विच बिठा के परले पार लै जाए क्योंकि मेरे विच कोई गुण नहीं जिदा मैं तेनू वास्ता देऊं गुण तो हीन रूप तो हीन कर्म तो हीन कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका मैं तेनू वास्ता देऊं ऐसी जदों अरदास कीती और अरदास कर दिया भाई सहदे दे अखां विचों नीर वह तुरिया तां फिर जदों कोई मन करके याद करदा है तां फिर यह अरदास किथे पहुंचती है गुरु दे चरणां विच भाई सहदे दी अरदास भी गुरु दे चरणां विच पहुंची साहिब जी ने आख्या भाई दया सिंह जी पातशाह साडा सिख भाई सहदा सानू याद करदा है आओ चलो उसनू दर्शन देण चलिए कुछ संगतां और प्यारियां नू लै के साहिब जी जदों उस नदी दे किनारे पहुंचे संगता और भाई दया सिंह जी आदत प्यारियां नू आख्या तुसी इना बेड़िया विच बह के उस पार चलो ते मैं अपने प्यारे सिख भाई सहदे दी बेड़ी विच बैठ के पार आउंदा सत संगत बोलो श्री नदी दे किनारे खलो के साहब जी आवाज दे रहे ओ भाई सहदिया बेड़ी लिया ना किनारे भाई सहदिया बेड़ी लिया ना किनारे जेडे प्यार नाल याद कर रहा से उहदे प्यार नाल बेड़ी विच बिठा भी ना सही लेकिन भाई सहदा नदी दे विचकार बेड़ी रोकी होई है ते विच बैठ के अरदासां कर रहा है कदों आओगे कदों तेरे दर्शन होणगे साहब जी जान गए ये चरणा नाल गंढ पा के बैठा है धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई सहदे दे हिरदे विच इत्थे गुरु दे चरण लै के बैठा सी उत्थों जाके आवाज दित्ती सहदिया अखां खोल जिसनू याद कर रहे हैं वो किनारे ते खड़ो के तेनू आवाजां दे रहे बेड़ी लिया ना किनारे झट अखां खुलियां की तकिया कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह किनारे ते खड़ो के बाहां उचियां करके आवाजां दे रहा सहदिया बेड़ी लिया ना किनारे बेड़ी लिया ना किनारे सत सजित बोलो श्री भाई सहदा अखां मलदा है कदे बंद करदा है कदे खोलदा है मैं सुपना तो नहीं वेख रहा फिर वेख्या वे तां सच है चप्पू मारदा मारदा बेड़ी लिया किनारे ते उतरिया बेड़ी तो आ चरना ते डिगा कलगीधर पातशाह गुट गलोकड़ी पाई चरना दे नाल
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنا راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے سری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ پائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو ماری

अखो सतनाम श्री श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्होंने रसना चो निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सेवा ते सिमरन दो चीजां ने दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउना ते उनू सुनना इदे बारे भी मेरे पातशाह दा फैसला है गावीए सुनिए मन रखिए भाओ तेरे अंदर भाओ होवे तेरे गाउन ते सुनन विच प्रेम भाओ होवे फिर दुख पर हर सुख कर लै जाए भाओ होवे जिस सेवा नूं लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए इहदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे

बादशाह है। धन गुरु अमरदास महाराज अपने इस पवित्र शब्द विच कहंदे ने, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए सारा जग सारा संसार राम राम करता है, पर सारियां नूं ओ राम मिलदा नहीं। क्यों? सिर्फ राम राम कहन दे नाल राम नहीं मिलदा, ओदों मिलदा है जदों मनों कहा जाए राम राम। कह लिया सारा दिन झूठ बोलिया ठगियां कीती ओ राम किवें मिले। राम राम करन दा मतलब ए कि कोई माड़ा काम नहीं करना, किसे नु सताना नहीं, किसे नाल धोखा नहीं करना, ताओ राम मिलता है। नहीं ता कोई फायदा नहीं राम राम कहण दा जे मन विच सच नहीं, मन जुड़िया नहीं। साहब जी कहंदे नहीं, कहण नु ते सारा संसार कहंदा पर सारिआं नु राम थोड़ा मिलदा।

आगम आगोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

कीमत किने ना पाई है। उस परमेश्वर की कीमत कोई नहीं पा सकता, ते ना ही पैसों दे नाल ओ राम किधरों मिलता। गुरु साहब ने कहा जो कोई इंसान ये कहे कि पैसों दे नाल मैं रब नूं पा लवांगा,

माथे तिलक, मथे दे तिलक ला ले, हाथ विच माला फड़ ले, ते राम राम कह लिया। थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया, ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गए।

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदा। मन विच भरोसा राम ते बजदे राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई। पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार करके हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लेंदे। एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लेनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राह मैनूं मंदर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नूं घर बुला के ओनू रोटी खुआवां प्रशादा छकावां ओदी सेवा करां। गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसे तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची। बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नूं पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको। पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे। तुरदे तुरदे जदू नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नूं के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है। गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावां। पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जा। गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पिछे पिछे आओ तुसी ते कदों दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां। ए कह के राम राम करदी ए गुजरी नदी दे उत्ते पानी दे उत्ते तुरन लग पई। ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पे। जदों थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे। जदों डुबन लगे ते उस गुजरी नूं कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी। ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसां बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे। हुण सवाल ए पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया
कारण की कारण ही हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम ते सारा संसार कहते पर सारे नु मिलदा नहीं मिलदा किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

उस पुजारी ने ते राम नु खड़ौने ही समझे, क्योंकि राम नु मानव च नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नु राम समझिया, वो नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहंदे ने मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के, वो बौरा नहीं जिन्हों लोग पत्थर मारदे ने।

लोग जेड़े ने ओ मैनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना ये पूजा करदा है।

संभे दा रंग कच्चा हुंदा है। कपड़े नूं रंग चाड़ो धोवो सारा रंग उतर जांदा है। इसे तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नूं वखरा वखरा करके समझदे ने समझो कि उन्हां उत्ते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरु दा रंग चढ़िया।

रहत बिना नैतिक कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा साहब जी कहते ने सिख किवें हो सकदा। ते रहत तो बिना वो चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

तू भाई जिन्ना मर्जी प्यार कर पर पराई औरत नू अपनी मां समान समझ जिहड़ा ये गल्लां मन्नेगा साहिब जी कहंदे ने ओ असल विच रहतवान।

परमा वह मच फेर पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने उनू राम उनू वाहिगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदा पर सारिया नू

गुरु साहबा ने सिख फुल सुनी सिख हाथ जोड़ के कह रहा पातशाह मैं किसी ने नहीं मारे साहब जी कह लगे नहीं सिखा दस तेनू डरन की लोड़ नहीं तू एक बारी कहता सही कि तेनू किन्ने मारे कह लगा पातशाह मैं किसी को डरदा नहीं सिर्फ आप तू सवा परमेश्वर तू सवा मैनू किसी ने नहीं मारिया जे किसी ने मारिया भी है तो बादशाह उन्होंने खिमा कर दे पर साहबान गुस्सा सी इस सेवादार नू मारिया जिड़ा चौबी घंटे सेवा च रेंदे सिमरन च रेंदे साहबा ने कहा जिन्ने भी इस सिख नू मारे है वो अपने आप हाजिर हो जावे नहीं तो बहुत बुरी सजा दिती जाएगी जिन्ना ने सिख नू कुटिया उठ के खड़े हो गए आके चरना ते डिग पे कह लगे पातशाह सानू खिमा कर दियो साहब जी कह लगे तुसा इन क्यों मारे है कहन लगे महाराज इस करके कि तुसी जदों भी आंदे सी इस सिख नू गले लगांदे जिदे कपड़े भी गंदे हुंदे ने साडे वल तुसी देखदे नहीं इस करके असी इहनू मारिया कि इह मर जाएगा ते तुसी साडे नाल प्यार करो साहिब जी कहन लगे भाई जे मेरी खुशी लैनी उस गुरु नानक दी खुशी लैनी ता सेवा करो मैं शरीर दी सुंदरता चंगे कपड़े देके खुश नहीं हुंदा मैं ता मन दी सुंदरता देखना इहदे कपड़े भावे मैले ने पर इहदा मन सुंदर ए सेवा करदा सिमरन करदा हुण उस सिख ने हाथ जोड़े जिनू कुटिया सी कहन लगा पातशाह कृपा करो इन्हां नू भी बख्श लो भावे इन्हां मैनू मारे पर इसे वास्ते मारे कि तुसी इन्हां नाल प्यार करो साहिब जी कहन लगे हां तू कहना है तां इन्हां नू माफ कर देनी हुण ओ जिन्हां ने सिख नू कुटिया सी हुण सेवा विच लग गए सिमरन विच लग गए साहिबां ने कहा सेवा करो सिमरन करो तुहाडे ते भी ओ गुरु नानक दयाल होवेगा ते भाई जेड़ा ना सेवा करे ना सिमरन करे ओनू किवें राम मिलेगा कई झाड़ू भी मारनगे ते मन विच ख्याल होवेगा सानू कोई देखे आखे कि ये सेवा कर रहे है एहो जी सेवा थी।

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह

0: सतगुरु युग युग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह हिंदी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र गोद विच दूरों नेड़ों चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाने के लिए गुरु दरबार भागे हो आओ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो अपनी सुरती अखां बाहर जाने तो रोको इधर उधर वेखन की कोशिश ना करो गुरु स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द के नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन से जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हैं क्योंकि सेवक उही हुंदा है सत्संगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नु अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: सो यह साढ़े चंगे भागां दी निशानी है कलयुग का बड़ा भयानक समा है ऐसे समय दे गुरु की शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके ये साढ़े चंगे भागां की निशानी है सो कदम सफल किए ने गुरु वाल चल के नेत्र सफल किए ने दर्शन करके सीस सफल किया नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल करया करो गज बज के तिना हिस्सों के बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: दिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे मन दी गति रुक जाए, किस तरीके दे नाल ए मन जिहड़ा दशां दे समझ भज्जिया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्तां पिआं भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पा के भी टिकदा नहीं है। कबू जीवड़ा ऊ चढ़ता है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थिर न रहता है, चारे कुंटा
1: पाले।
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे। केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े होए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है। जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावें मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जड़ी है, जो परमेश्वर दे नाल जुड़िया सत्संग सेवा से मन दे नाल मिलती है, वही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वही सदीवी शांति है जो आके जाती नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उसनू आत्मक शांति कहते हैं। सो नहीं तो गुरबाणी दे विच गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं। मैं तू बाकी छोटे मोटे की गल्ला छड़ दे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए
1: सुखिया।
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का मालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते नूं भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की, सृष्टि के मालक की हालत की है,

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी के में होएगा पाए। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असीं सोचदे हां भी नाम जपना कि सानू नाम जपन नाल ही सुख मिल सकता है। फिर बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार का त्याग करना पवेगा। हां संसार का त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां का कारण है, सारे दुखां का कारण मोह है, सारे दुखां का कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं किथे जावांगे, नहीं। गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, योगियों ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे साध संगत उन्हां दी कन्ना पाड़ के मुंदरा पवा दतियां, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: योग दे नाल भी योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया,
0: तीर्थां दे बैठ गए, वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना, पाठ परिवार वेद विचारियो निमर पहंगम साधे, पंच जना संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल ना जाई, मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेका ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका,
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत ना होया। बोलो
1: सतनाम
0: पार्थरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने योग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई, अजे भी कहते हैं हे नारद

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हाँ, रास्ता दस दिंदा हाँ। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाण की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उत्थे तेनू शांति मिलू, तेनू सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनू कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मांगू, मैनू दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नू किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नू अराध याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेनू आपे ही मिल जाणगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु हुंदा है, उसनू गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उहनू दर ते आए नू भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अनाधिकारी नू तू याद कर, बेनतियां कर, सो वक्त आया, समा आया। ओही पार्थर, होर बहुत सारे योगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो बैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा, ना ही शंके करदा, ना ही सवाल जवाब करदा है, दोवें ही काम करदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी योगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिद्धियां सिद्धियां विखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे योग दे विच आ जाए, किन्ना योग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला योगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा, क्योंकि ये दर ऐसा है भाई

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम। ए राग बिहागड़ा दा सतगुरु पातशाह जी दा पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उच्चारण किया है। राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरवण किया है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान योग सत्कार योग साडे पिता जी गायन करते ने, तो आओ इस रीत राग बिहाग दी है हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो।

क्यों तू गुरु दा सिख है? जे धार भी लिया उनू मोड़न दा फिक्र रवे तेरे सिर। एहो बचन काम आंदे जी। पौ पिंड मैं बैठा सी, बाबा खड़क सिंह जी ने पहले उस गुरुद्वारे की सारी सेवा करी, उन्हें गुरमुखां वचन सुनाया कि बाबा खड़क सिंह जी की जिथे जिथे सेवा चलती सी ना, हर जगह एक अद्धा मुखी भाया हुंदा सी, ते अपने मुखी नू हदायत हुंदी सी ओए कोई चीज धार नहीं लैनी, इट भी लोड़, सीमेंट भी लोड़, रेत भी लोड़, बजरी भी काम चलते, पत्थर भी लोड़, कोई कुछ धार नहीं लेना। फिर कहते जे मजबूरी लेना भी पै जाए, लेना पै गया काम रुक गया, वे दो ट्रक सता ले, लेना पै गया काम रुक गया, पांच ट्रक किटा के किसी आ गए। कहते जे मजबूरी लेना भी पै गया, तो जदों किसी संगत के प्रेमी की सेवा आ गई है, मान लो कोई बंदा आया 10,000 सेवा दे गया, तो कहते जे सेवा हाथ च फड़ी हो, बाबा खड़क सिंह जी का बचन, अवल किसी को उधार लेना नहीं, जे लेना भी पै जाए, जदों किसी की सेवा आ गई संगत, कहते सेवा हाथ च फड़ी हो, दूजे बन्ने जंगल पानी आया हो, एक ताड़ना, कहते जंगल पानी बाद जाना जिदे को उधार लिया पहले दे के आखो सतनाम कोल नहीं रखना। बहुत कुछ मिलता महापुरुषों के जीवन उथो सच ना मिलेगा, तो सच केड़ी दुकान तो मिलेगा, कितों मिलेगा? कोई कमेटी चुक लो, टाइम सिर भुगताओ जे खालसे हो, किसी को उधार लै लो उन्हू टाइम सिर दो जे खालसे हो, किसी बैंक को लोन लिया जे समय सिर दो जे खालसे हो, दे खालसे का एक कम है शिकर रखना, जे कुछ लिया किसी का हक जे कुछ चिर लई उधार रूप च किसी रूप च तेरे वाल आया तू मोड़। पढ़ लो नाल नाल मन ते पक्कियां मोहरां लग जाण।

जी के मार्ग से चलदिया चलदिया जग्यासु नूं इह समझ आ जांदी है कि हरी अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ही उस लई सब तों वड्डी दवाई है। इसे लई प्रभु का नाम जपण लई बार बार बेनतियां अते अरदासां करदा है अते मन विच अपनी गलती भी महसूस करदा है कि संसारक झमेलियां करके ओ नाम नहीं जप सकिया। इसलिए बेनती करदे होया महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे ने, औखद तेरो नाम दयाल मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करह प्रतपाल। भाव हे प्रभु मैनू समझ आ गई है कि केवल तेरा नाम ही मेरे लिए सारे दुखां दी दवाई है। मैं अनजान ने तेरी महानता नू नहीं समझिया, ऐ प्रभु तू आप कृपा कर ताकि मेरा जीवन सदा तेरे लेखे लग सके।